जिट पुट अंदर बाहर कुदरते बोले संसार तीन हो लगा रब सिद्धिक ने विचार रंग हसे रंग रोबे चुभी कर जाहे परवाना किसे।

पौड़ी जित से भी ये सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित किता पाए अपना साकाल पूरे क्यों कालिए मंदा मुना किश दिन बिन त्रण आलिए जो साहिब नाना हरिए।

0: ब्रज में जेज पुत जा सातो आकाश सातो पताल मित्रु अदृष्ट जे कर्म जार पुस्तत संपूर्णं
1: स्लाक महला पहला पे पांडे साजी ना पे पूर्ण है एक ने दत समय एक चुलरन चले एक ने हाली पैसन

0: रखनीस के पाशाह जी महाराव
1: चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।

सोने ते ओलवे वाहिगुरु गावे ते ओए दैवे सोने ते ओलवे वाहिगुरु बिन से पापे घनेरे बिन से पापे घनेरे सचिया पाए दिशा बिन से पापे घनेरे पैसे मरे

बल्ले हारे सचिया सैदा सैदा बल्ले हारे तो दिया गे यारे दास है मारी वारी तो दिया गे यारे दास है मारी वारी जियो बेंड सब तेरा जियो बेंड सब तेरा सचिया बादशाह जियो बेंड सब तेरा कहना नक सब तेरी वड़ी आई वाली कहना नक सब

श्री अमृतसर सरोवर जी दे इशनान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दीदार मिले, बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, विवेक सर जी, राम सर जी।

पाल हरिया छेद हरिया भेद हरिया जंत्र हरिया मंत्र हरि सो तेज हरिया तंत्र हरि अजात हरिया पात हरिया मित्र हरिया मात हरिया रोग हरिया शोक हरिया भरम हरिया करम हरि अजय हरिया भय हरिया भेद हरिया छेद हरिया खंड हरिया भंड हरिया दंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरिया भेव हरिया जेव

छस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही उर्दस्तु ही भजस्तु वंग रटस्तु वंग जिमी तु ही जमा तु ही मकी तु ही मका तु ही अभूतु ही अभतु ही अभूतु ही अछतु ही जतस्तु ही व्रतस्तु ही गतस्तु।

कहूं देह दुखं कहूं औखधि रोग के सुख सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सादगी तामसी हों कहूं जोग विद्या धरे तापसी हों कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हों कहूं जच विद्या धरे मानवी हों कहूं राजसी हों कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ट की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की कावक थ कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं वत्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीत

कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतंग कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुला चारणी की।

0: तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप द्वय अनाश अंटोत्तर तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंश जिगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतपान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय याद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत तुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावतन पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पवन हार कई कई अगन होत्र कई पवन हार कई कई तसा गोण पत्र वचन कई तदेव होकर तर्चय नहीं तदेव गोवर गान गंधर्व वीत कई वेद सत्य ग्रंथ ज्ञान भक्ति वेद गौ में बिरी सत्य क्रिया ये कर्म की गौ में हो जित कम जित कर राम गम अगन होत्र कई देश तेज भार अनंत कई देश तेज तेज जगा प्राण नट कई कर पांत बंद पिंद यार नहीं नहीं करत समाद जतन प्रचार नहीं कई तीर तीर द्वारा मासो परम कई तन होत कई कई कसम भरे कर कई पवित्र जाय दे अलग नहीं तई कर
1: जो नहीं।

देव है कहो सो कैसे पाई है। जिमी जमान के बिगे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होता है, नहान है न बान है, समान रूप जानी है, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानी है, न देह है न देह है, न गेह है, न जात है, न पात है, न मंत्र है, न मित्र है, न तात है, न मात है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, न दुख है, न दाग है, न द्वैख है, न देह है, न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संग है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साहु है, न साहु को कुमार है, न नेह है, न गेह है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद।

परे बरार है राम गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा सरस्वती तपस्वती परस्वती जत सदा तपस्वती करंत सदा जय बड़े तपस्वती पिसे की है बड़े बड़े तपस्वत को कर सुबाट में की है तक पकार धरा देव की है बात मगर ये जाते पर की मन कद में कर सत सले है जंगल में तंत्र मित्र जीव सर्व लोग की पाल ख्याल सर्व सर्व को हरे के आत्म बांध सूरत हरे है।

0: नारद आदिक वेद व्यास मुन मान आदिक वेद व्यास ध्यान मागे सवन कर कूल कर ध्यान तक दावत दावत सुखे गंगर राज पछर पार सुद सुद के महा स्वार मुने पाय स्वार मुने पाय प्रसाद एक समय दिया प्राप्त त्रियो एक समय कसने नर समात लाभ जगदीश को कहो सकर सकता है दो प्राप्त कहो को अपना स्वरूप है कहाँ से शुभ बुद्धा कर कौन धर्म को कर को
1: चेत प्रकाश दोहरा कहाँ ज्ञान ज्ञान कुबड़ोगी सोगी कमर कहाँ धन की हान दोहरा को सूरा सुंदर कवन कहाँ जो को सूरा को तन तह ज्ञान जी कवन सो विचार विचार दुआ प्रसाद दिशा की छंद।

कि जदों भी आपां गुरू की बात करिए ते धर्म की गल करिए वाहिगुरु जी दे बाबत कुछ बोलीए इंसान अलपग्य है ना समझ है जाने अणजाने कोई गलती हो गई ओदी पहले ही माफी मंग लैनी चाहीदी है ते उहने आप प्यारियो बहुत

चौथा सो पुरख एक ओंकार सदगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब ध्यावहे सब ध्यावहे तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ध्यावो संतह जी सब दुख विसार निहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो से वह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ध्यावह तुद जी से जिन जग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फासी जन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भाव सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अने

तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत सास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडियावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा।

चुन चुन सत्र हमारे मारिए, आप हाथ दय मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, उजो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज जो करियो रच्छा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा,

0: राधा जब आरप करता हूँ कब हूँ तो मैं मल हूँ देवर सब हूँ जेते बदन सरेश्ट सब जेते आदम साप समी सब दाले चार तुम सब ही तेरा रतंदर अल संजान ते बेत बेत पंजालम बेत नरंकार नरंदर भुदार नरलाम भर नरलाम भर नील नाद असाद भर नील आंगाम मोड़ संचार तभेता जाको भेल राजा है बैठा कहूँ सुमट भयो शंकर
1: ਕੋਈ

0: दास जान कर दास पर की जय कृपा सार आप हाथ बरख मोहे मन भारत दर्शन विचार कहो मेरी वचन मान नौकरी से प्रथम मना कृष्ण कृष्ण कहो ना ध्यान तान सुन ध्यान नत सोल लह जी मोरी सोल सोला की महा पागल रन सोला रहमारो मारो मैं किन करो मारो मैं ज्ञान करो रखवार
1: दास कर

विस्मासपत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हज

भय विचिंद फ्रै सिर भार, भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच सूरज भय विच चंद, कहो करोड़ी चलत न अंत। भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाद, भय विच आडाने आकाश, भय विच जोत महाबल सूर, भय विच आवह जावह पूर सगलिया पौ

पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेते यार जा पढ़िया जेते सास। नानक लिखे एक गल होर हाओ मैं झखना।

कूड़ मिठा कूड़ माखिया कूड़ डोबैपुर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।